उदास खने खने अधर आगे करु बास चौकी चले खने खने चलु मंद मनमथ पाठ पहला अनुबंध हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर खने अचर दाए खने होए भोर।